0: दिल लाई
1: ए आलसंदे महे दोर गंगे कल नहीं न हदे मैं भी पेनीला
0: सम अनुग्रहाय
2: वार्ता पिट वार्ता तबने कोटि अटे एनएलबी धननिधाने लुतराइयन रटे संवर्धनेट तनंत शक्तियक वेमिन ओबत दिनवा रटत दिनवट धननिधाने बिलदीगेन ओबत कोटिपतिय कुवन
3: हवस 5 विनाडी 32 वेलाव

सूत्र देशनाव महाकारुणिक बुदुरजानन वहन्से विसिन लोक सत्त्वया वेत अनुकंपावेन देशना करन लद आरक्षक परित्राण देशना अतरिन महा समय सूत्र देशनाव अति विशेष वूवकि तारका समूहयक पिरिवरा बेबलिन पूर्ण चंद्रयासे एदा कपिल वस्तु नगरा सन्ने महा वनपित एकालोक करमिन समस्त महा विश्व तलेम बुद्ध ज्ञा छत्रेट हसु करमिन पवत्वन लद मे देशना विशेषेन्म सज्जायना किरिन्ने सम्यक दृष्टिक दिवितेवताउं वहन्सेलागी एल्म बेल्महा आशीर्वादे अपेक्षाविने एदा बुदुरजानन वहन्सेगी श्रीपाद मूलेहि गौरवा विवादन पूर्वकव दस दहसक चक्रावाट्यन सित सपमिने महानुभाव संपन्न दिव्य गणया बुदुरतुन सरण गिय यम पिंवतिक वेनम ए अय किसीदा अपायगामी वन्नी नेते कियमिन बुद्ध प्रमुख श्रावक संघ रत्नयट स्वकीय अत्यंत गौरवय पुदकलह मे वनाहि विश्वगत दिव्य शक्तिन एकराशी करमिन जीवितेत एलमिन सकलांतराय दुरुकुट सित शांतिय सलसीमेला महोपकारी वन परित्राण धर्मयकि सियलु देवियन्के आशीर्वादय पिनिस ए महानुभाव संपन्न महा समय सूत्रय सतहे सितिन सज्जायने करुण लबन्ने पूज्य गणि कुमुरे शांत स्वामी वहन्से।

भावे शोक रोग भय अनतुरु अमनुष्य उपद्रव राज भय सुर सतुरु करदर गिनी बिय तिरिसंगत सतुन्गेन सितुवन सियलु उपद्रव दुरिं तुरु